0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டீர்கள் உழவர்களுக்கான தகவல்.
1: 14 அகஸ்ட் 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
3: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
3: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल

0: फिर इसे झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
1: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी, 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था।
1: जी।
0: आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
1: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
1: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
3: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर रहे हो।
4: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
3: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
4: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछ

0: करी कुछ फैसला कर सकता हूं।
1: जैसे तुम्हारे मर्जी।
2: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
3: अरे भाई कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
0: जी मैं दादा भाई हूँ।
4: दादा भाई?
0: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियाँ स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
5: अरे लड़कियाँ पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
3: अरे लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
5: अरे जाओ कुछ और काम करो।
0: सुनिए सुनिए आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी। वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
2: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
0: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
2: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
0: मेरे साथियों साथियों हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
5: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
0: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
6: लेकिन वो कैसे?
0: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
6: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
5: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
6: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
0: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
2: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा

चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने यह साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरो जी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओ आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी, क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूं? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ।
6: हाँ।
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान

0: कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
1: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के चार आने का ही सवाल है।
0: सवाल चार आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिख सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
1: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
0: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
1: ठीक है,
0: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
1: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
0: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
1: क्या?
0: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें।
1: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
0: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
1: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
2: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
3: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
2: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
4: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
5: हाँ भाई इरादा तो पक्का है।
4: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
5: हाँ काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
4: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
5: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो वो आ ही गए।
0: क्यों दिनेश भाई कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
5: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
0: नहीं भाई मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
5: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है।

0: सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
1: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं
2: जी,
1: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
0: उससे क्या होगा
1: भाई? अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं?
0: हाँ।
1: ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
3: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
4: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
1: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े-बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
5: ठीक है, हम सब तैयार हैं। हम तैयार हैं।
1: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
5: नहीं।
1: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
5: नहीं।
1: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
5: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
4: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी, और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।

0: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है।
1: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: GRT ஜுவல்லர்ஸ் வழங்கும் ஆடி தங்க திருவிழா. சிறப்பு சலுகையாக புதிய தங்க நகை மீது கிராமிற்கு 700 ரூபாய் குறைவாகவும், பழைய தங்க நகை எக்ஸ்

0: சைபர் செக்யூரிட்டி போன்ற முன்னணி துறைகளுக்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. கவுன்சிலிங் கோட் 4961.
1: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினத்தை புதிய BSNL ஃபைபர் கனெக்ஷனோடு கொண்டாடுவோம்.
3: 200 MBPS ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்,
2: 5000 GB டேட்டா,
3: ஒரே இணைப்பில் 27 OTT, இலவச ONT யுடன் டூயல் பேண்ட் வைஃபை,
2: இந்தியாவில் எந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கும் 24 மணி நேர அழைப்புகள்,
3: அறிமுக சலுகை 88 ரூபாயுடன் மாதாந்திர கட்டணம் 1111 ரூபாய் மட்டுமே.
2: சுதந்திரமான ஸ்ட்ரீமிங், சுதந்திரமான இணைப்பு. கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை.
4: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब कोई राह नजर आए, नाल का साथ पाए, मध्य

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र

निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्र जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्ति

सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो।

हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास

जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को यह कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्य लोए।

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மாண்புமிகு திருமதி திரௌபதி முர்மு அவர்கள் சுதந்திர தினத்தினை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையினை நாம்

पिता की बात कह रहे हैं, और जो सगुण जो ईश्वर है उसको निराकार ब्रह्म से जोड़ करके एक जनमानस को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आनंद मठ की रचना करते हैं तब तक वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो भारत का शोषण हुआ पिछले 100-150-200 वर्षों में उससे कैसे निजात दिलाई जाए। और जो आर्थिक राष्ट्रवादी थे वो पहले से इन बातों को लिख रहे थे कि बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, लेकिन इनका एक अलग तरह का दृष्टिकोण था। इनका दृष्टिकोण यह था कि जिस तरह से यहाँ पर एक स्व का नाश हुआ, जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हुआ, संस्कृति का ह्रास हुआ, हमने पाश्चात्य

0: नैतिक मूल्य थे उसको हमने उतनी तवज्जो नहीं दी, उतना मूल्य प्रदान नहीं किया नैतिकताओं को, और वह राके और हडर को पढ़ चुके थे। जैसे राके और हडर ये कह रहे हैं कि हर युग का अपना एक इतिहास है, हर सभ्यता का अपना एक मूल्य है, तो अलग अलग युगों में यदि सभ्यताएं हों या अलग अलग जगहों में यदि कोई सभ्यताएं हों तो उसको एक ही मापदंड से नहीं जांचना चाहिए। तो उन्होंने भारत के विकास को, उस समय के इतिहास को नापने के लिए उसके मूल्यों को ही धरातल में बेस बनाने की कोशिश की, इसलिए उनका मूल्यांकन बिल्कुल अलग तरह का है। आनंद मठ एक ऐसे सन्यासी विद्रोह की गाथा है जो विद्रोह करा, जो जिस तरह से बंगाल में शोषण हुआ उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ, और जंगल में एक आनंद मठ बनाते हैं, एक मठ बनाते हैं जहां जो लोग रह रहे हैं सत्यानंद के नेतृत्व में वह सब अपने को संतान मानते हैं। वहीं उनको सत्यानंद उनको इंस्पायर करने के लिए, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए वंदे मातरम गीत गाते, यह इसका संदर्भ है। और इसको 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गाया, धुन भी दिया और इसको गाया भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में तो इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक आधार मिल गया, वहीं से यह स्वतंत्रता का गीत बनता गया।
1: तो सर, जैसे आपने बताया कि हमारे देश में जो आज़ादी का दौर था, कहीं ना कहीं लोग स्व को भूल चुके थे, स्वदेशी को भूल चुके थे, और वंदे मातरम ने उनको याद दिलाया कि स्व क्या होता है। तो सर, हम आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था और जब बंगाल विभाजन का दौर था 1905 का, तो उस समय वंदे मातरम ने किस तरीके से लोगों के मन में देश के लिए, स्वदेश के लिए एक भाव उत्पन्न किए, उसका क्या रोल था सर?
0: देखिए, यदि आप थोड़ा और पृष्ठभूमि में जाएंगे जी, और जो कांग्रेस पार्टी बनी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना, वहाँ वह अंग्रेजों का विरोध उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जैसा कि लोगों की इच्छा थी, वह भारतीयों के मुद्दों को पहुँचा रहे हैं। लेकिन जो मॉडरेट फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जी, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ देख रहा है, वह ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस की बात भी कह रहा है, उससे इतर होकर के एक अलग तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें शिवाजी, कृष्ण और शक्ति, इन तीनों को फिर से उठाने की, उभारने की कोशिश हो रही है। कृष्ण चरित्र लिखा बंकिम चंद्र ने भी, अरबिंदो ने भी बाद में लिखा, गीता रहस्य तिलक ने लिखा, ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे जो कि क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर गए थे, उन्होंने भी कृष्ण तत्व लिखा, रोमेश चंद्र दत्त ने महाराष्ट्र जीवन प्रभात लिखा, टैगोर ने 1904 में शिवाजी पर एक छोटा सा पैम्फलेट लिखा, एक निबंध लिखा, और शिवाजी उत्सव इन्होंने मनाया, तिलक ने मनाया। और शक्ति और तंत्र जो पूर्वी भारत में बहुत पुराने समय से चला आ रहा, उसको बंकिम ने पुनर्जीवित किया एक बड़े एक जनसमूह जन सामूहिक स्तर पर, इसलिए आप देखेंगे कि शक्ति की आराधना हो रही। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जब बंगाल का विभाजन होता है और वह सांप्रदायिक आधार पर हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने के लिए हो रहा है, तो एक बड़ा बड़ा विद्रोह शुरू होता है बंगाल, और लोगों को लगता है कि हमें इमैस्कुलेट कर दिया गया, हमें तो पूछा ही नहीं जो इतना बड़ा कदम उठाया, जो जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर इतना पड़ना है उसका निर्णय अंग्रेजों ने खुद ही खुद ले लिया। तो उसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और वह आंदोलन जो पार्टीशन विरोधी आंदोलन है वह धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन में परिवर्तित हो गया, उसका सकारात्मक पक्ष भी आ गया। जब वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जब पार्टीशन का विरोध शुरू हुआ, वहां वंदे मातरम एक मंत्र के रूप में उभर करके आया, और उसी ने इंस्पिरेशन, द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द स्वदेशी आंदोलन वॉज वंदे मातरम। उसी प्रभात फेरी में भी वही गाया जा रहा है, जो कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं वहीं पर गाया जा रहा है, कुछ इस हद तक कि 1905 से 8 के बीच में लोकल कमिटीज ने, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वंदे मातरम गाने पर कई जगहों पर रोक भी लगा दी। और 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, वहां टैगोर के परिवार की सरला देवी चौधरानी को गोखले ने बुलाया गाने के लिए, उन्होंने गाया, लेकिन इशारा यह था कि इतना स्पष्ट मत गाइए कि लोगों को पता चल जाए, अंग्रेजों को पता चल जाए कि ये वंदे मातरम का ही गायन हो रहा है। तो जहां 7 करोड़ का फिगर था उसको उन्होंने 30 करोड़ का फिगर बना दिया।
1: अच्छा,
0: तो उस तरह से थोड़ा बहुत एब्रीविएट करके उसको सरला देवी चौधरानी ने गाया
1: जी।
0: और 1906 में ही बारिसाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, अप्रैल 1906 में। आप मान सकते हैं कि जनमानस के, मतलब एक बड़े समूह में पहली बार

0: उगाया गया जिस पर कि लाठी चार्ज हुआ, इसको बैन किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लीड कर रहे थे, इन सबको अरेस्ट किया गया। अश्विनी दत्त वहाँ के लोकल लीडर थे और वहाँ से यह और भी विस्तार हुआ। विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम अखबार शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका एडिटरशिप अरबिंदो ने ली। तो अरबिंदो ने बंकिम को राष्ट्रीय ऋषि की संज्ञा दी और एक और अखबार वह संपादित करते थे, सांध्य। तो सांध्य में उन्होंने लिखा कि हर शहर में, हर गांव में आनंद मठ बनना चाहिए। यदि हर शहर में, हर गांव में आनंद मठ बनेगा तो जो 7 करोड़ लोग हैं जिसकी चर्चा वंदे मातरम में हो रहा है, और 1872 के सेंसस पर आधारित था वो फिगर, और जो 14 करोड़ भुजाएं हैं वह अवतरित हो जाएंगी, वह आगे आ जाएंगी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। वह जो इंस्पिरेशन है वह आगे बढ़ाने का काम अरबिंदो ने किया। अरबिंदो की भाषा बहुत प्रखर थी। अरबिंदो वॉज ए वेरी जीनियस, वॉज ए वेरी एक्सेप्शनल माइंड। तो उनकी लेखनी का असर बहुत ज्यादा हो रहा था। और वंदे मातरम सिर्फ वही नहीं रुका, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, हर जगह वंदे मातरम गाया जा रहा है और विदेश में भी। 1906 में जब यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है तो बंगाल में वंदे मातरम की का झंडा भी फहराया जा रहा है, जहाँ बीच में वंदे, और 3 रंग का है, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, उसी तरह का झंडा, एग्जैक्टली सेम नहीं, कलर पैटर्न वही है लेकिन फोटोग्राफ्स कुछ अलग हैं, उसी तरह का झंडा मैडम भिकाजी कामा ने स्टुगर्ट में 1907 में जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उन्होंने उस झंडा को वहाँ फहराया, जिसको हम इतिहासकार यह भी मानते हैं कि पहली बार भारतीय झंडा को फहराया गया वहाँ पर फहराया गया। और मैडम भिकाजी कामा ने वंदे मातरम अखबार भी शुरू करवाया, सपोर्ट किया वहाँ पर, पहले जिनीवा में और बाद में बर्लिन में जी। और उसके हरदयाल, जो लाला हरदयाल जो वहाँ से आए थे अमेरिका से, उन्होंने उसको संपादित करना शुरू किया, यहीं दिल्ली से गए थे पहले
1: जी जी।
0: और वीवीएस अय्यर ने भी किया, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने भी किया। उस वंदे मातरम की जब प्रति महाराष्ट्र में आ रही थी तो यहाँ पर उसको बैन लगा दिया, तो वंदे मातरम जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस है, रिवोल्यूशनरीज हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, उसको भी इंस्पायर करने का काम कर रहा है। देश में तो है ही, जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां भी वंदे मातरम गाया जा रहा है। और इस अवधि में 1908 के बीच में कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी कवि थे सुब्रमण्यम अय्यर तमिलनाडु के, उन्होंने 2 बार इसका अनुवाद किया, 2 अलग अलग संदर्भों में, 1905 में, 1908 में। गुजराती में भी इसका अनुवाद हुआ, मराठी में हुआ, तेलुगु में हुआ, मलयालम में हुआ, उर्दू में हुआ, हिंदी में हुआ, कई भाषाओं में, दर्जनों से ज़्यादा ट्यून बने। आज के समय में देखेंगे तो 100 से ज़्यादा ट्यून आपको मिलेंगे वंदे मातरम का। और कुछ जो संस्कृति विभाग ने एक वेबसाइट डिजाइन करके उसमें बहुत सारे ट्यून रखे भी हैं जो अलग अलग ट्यून में कब कब गाए गए गाना को। तो यह अद्भुत है, इसमें इंस्पिरेशन है और इसके शब्द और इसका धुन, वह दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है आगे बढ़ने के लिए।
1: तो सर, जैसे आपने मेंशन किया कि वंदे मातरम को उस समय काफ़ी जगह बैन कर दिया गया था, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था उसमें वो बैन करना वंदे और वंदे मातरम एक कैटलिस्ट के रूप में उभर के आए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब आप किसी चीज़ को बैन करते हैं तो लोग और उसको गाना चाहते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अखिल भारतीय स्तर पर कोई कानून बन गया इसको बैन करने का, लोकल लेवल पर डिसीजन लेते थे कि ये सेडिशस सॉन्ग्स है, ये अंग्रेज विरोधी गाना है, ये साम्राज्य विरोधी गाना है, तो लोकल लेवल पर इसको बैन करते थे। उससे लोग और अलग अलग ढंग से, जैसे कभी गा नहीं रहे लेकिन बैच लगा लिया, झंडा उठा लिया, क्योंकि झंडा को आपने बैन नहीं किया तो झंडा उठा लिया, कभी बैच लगा लिया, कभी गा रहे हैं तो उसमें कुछ शब्द बदल दिए, और इस तरह से वंदे मातरम। और देखिए, जो क्रांतिकारी वर्ग है
1: जी,
0: 1905 से 6 से ईस्वी से क्रांतिकारी वर्ग बड़े स्तर पर उभरता है, उससे पहले थोड़ा सा सीमित है, महाराष्ट्र में है, चापेकर ब्रदर्स हैं, सावरकर ने अभिनव भारत की रचना की है, बनाया है, निर्माण किया, और शिफ्ट थोड़ा सा इंग्लैंड में इंडिया हाउस बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वहाँ कई कई सारे क्रांतिकारी, जिसमें कि सावरकर भी 1906 में शामिल होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। लेकिन बंगाल के भीतर जो अनुशीलन और जुगांतर, दो सबसे बड़े सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इसी समय में आगे बढ़ते हैं। जितने क्रांतिकारी देखेंगे वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं
1: जी। तो इसीलिए वंदे मातरम एक कैटलिस्ट के रूप में उभरा। और जैसे आपने मेंशन किया कि सर विदेशों में भी वंदे मातरम गाया गया था, तो विदेशों में इसका क्या इम्पैक्ट था और उसका हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा?
0: देखिए, जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस हैं, जो रिवोल्यूशनरीज हैं, वो अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, और जो मिडिल ईस्ट है उसके कुछ देशों में भी हैं,

0: वहाँ जहाँ पर इनको ये लग रहा है कि कानूनी रूप से इसका विरोध नहीं है, वहाँ उसको लिखने का गाने का इस तरह की परंपरा है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट अखबार निकाल रहे थे इंग्लैंड में, उसमें काफ़ी लिख रहे थे, और वो फिर यहाँ पर भी इम्पोर्ट होते थे, यहाँ पर भी आता था, यहाँ कई बार उसको बैन भी किया गया। अर्थ यह है कि जो वंदे मातरम का एक कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जा रहा है, जो गांधी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसमें गाया जा रहा है, लेकिन जो सीक्रेट सोसाइटीज, जो क्रांतिकारियों का समाज है, जहाँ छुप करके बहुत तरह का काम करते हैं, वहाँ इसकी लोकप्रियता बनी हुई। जो नौजवान भारत सभा जो शुरू किया भगत सिंह ने, उसमें गाया जाता था, उसके दस्तावेज में लिखा हुआ है। और कई सारे क्रांतिकारी जो शहादत में जा रहे हैं, जो अपने को आहूत कर रहे हैं, वह वंदे मातरम उस समय भी गा रहे हैं जब उनको दंड के लिए ले जाया जा रहा है, जब वो शहादत के लिए जो अपनी आहुति देने जा रहे हैं उस समय भी। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम है, सूर्य सेन का नाम है, खुदीराम बोस के प्रोसेशन में जो उनकी शव यात्रा हो रही है, उनका जब प्रोसेशन हो रहा है, तो उसमें लोग गा रहे हैं वंदे मातरम को, और वो बहुत कम उम्र के थे। तो इस तरह से, और सरदार उधम सिंह जब वह भी जा रहे हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में, तो वहाँ पर भी वंदे मातरम लिख करके उसको ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम एक सैल्यूटेशन हो गया कि एक दूसरे को क्रांतिकारी एड्रेस कर रहे हैं वंदे मातरम कह करके। और जब उनको लग रहा है कि हम अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कौन सा शब्द सबसे उपयोगी होगा, सबसे अप्रोप्रिएट होगा, तो वह है वंदे मातरम।
1: सर, जैसे आपने कहा कि क्रांतिकारियों के लिए एक ये सैल्यूटेशन बन गया था वंदे मातरम, तो जो वंदे मातरम की अगर हम लिरिक्स पे जाते हैं तो उसमें है, त्वम ही भक्ति, त्वम ही शक्ति, त्वम ही प्राणा शरीरे, तो कहीं ना कहीं ये लाइन ही दर्शाती है उनके समर्पण को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप इसके लिरिक्स को देखेंगे, वंदे मातरम के शब्दों को देखेंगे, तो ये अद्भुत है
1: जी।
0: यह किसी युग में, किसी दौर में एक ही बार लिखा जा सकता है, ये बार बार यह अवतरित नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल सर,
0: जिस भाव में बंकिम ने लिखा होगा, जिस मनः स्थिति में, वह अद्भुत रहा होगा, वह इतिहास के एक मील का पत्थर है। इसमें देखेंगे कि प्रकृति की चर्चा भी है, भारत के भूगोल की चर्चा भी है, और उस भूगोल में मातृत्व को, जो मदर इंडिया है, जो भारत को शक्ति के रूप में अवतरित करने की बात है, दिखाने की बात है, वो अलग तरह की है, वह अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे हवाओं की बात कह रहे हैं कि जो दक्षिण से जो शीतल हवाएं आ रही हैं, और खेत खलिहानों की बात है, ग्रीन कलर की बात है, जल की बात है, सुजलाम सुफलाम, फल मतलब कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है, जल जो मतलब एक सेक्रेटनेस है जल के प्रति हमारे हिंदुस्तानियों का, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और देखिए 1872 के सेंसस से 7 करोड़ का फिगर लिया बंकिम ने, क्योंकि 1875 में इसकी रचना हो रही है, और यह कह रहे हैं कि माता, क्योंकि यह बार बार स्पष्ट हो रहा है कि इतने सारे हमारे देश में इतने लोग हैं, फिर भी भारत माता परतंत्र क्यों है, हम शक्तिहीन क्यों हैं। तो कह रहे हैं कि 7 करोड़ संतानें हैं, और आनंद मठ में सत्यानंद लोगों को बार बार संतान कह के बोलते हैं कि हम लोग सब संतान हैं, तो 7 करोड़ संतान हैं, और 14 करोड़ भुजाएं हैं, उन 14 करोड़ भुजाओं में जो तलवारें हैं, इतनी शक्ति है, तो यह माता अबला कैसे हो सकती है। कहते हैं माता को कि आप ऐसे, इतनी शक्ति है तो आप अबला कैसे हो सकती है। उसके बाद विद्या की बात कह रहे हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों का बार बार जिक्र आ रहा है प्रतीक के रूप में। विद्या का जिक्र आ रहा है, शक्ति का जिक्र आ रहा है, दुर्गा का जिक्र आ रहा है, उसके 10 आयुधों का जिक्र आ रहा है, जो इंस्पायर करता है लोगों को युद्ध में जाने के लिए, प्रेरित करता है कि आप किसी भी तरह का परतंत्रता अधीनता स्वीकार न करें। और फिर वह आनंद मठ में एड्रेस करते हैं कि आप ही भक्ति हैं, आपके हृदय में ही मर्म है, जितने शरीर हैं संतानों के, सबके प्राण आप ही हैं, तो वहीं से उद्गम स्थल है, जो उद्गम स्थल है, जिसको आप मातृत्व कहते हैं, वही असली शक्ति का स्रोत है, उसको बार बार नमामि कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। इससे अच्छा इंस्पिरेशनल सॉन्ग क्रांतिकारियों को मिल नहीं सकता।
1: बिल्कुल सच बात है सर, कि इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल सॉन्ग न तब मिल सकता था, और आज के परिप्रेक्ष्य में सर अगर हम देखें, तब भी मुझे लगता है कि इसके भाव उतने ही सार्थक हैं। आपका क्या विचार है?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: जो देखिए जो अधीनता है, परतंत्रता है, सशक्तिकरण है, विकास है, यह हमेशा चलता रहा। ठीक है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उससे उस गुलामी से हमें निजात मिला, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन यात्रा वहाँ स्वतंत्रता के साथ ही खत्म नहीं होती,
1: नहीं होती।
0: यात्रा लगातार चलती रहती है। हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिस्सा हैं, एक कॉम्पिटिशन का दौर है, और यह मान करके चलिए कि हमेशा आप सुरक्षित नहीं हो सकते, तो आपको सजग भी रहना। जब आप सजग रहते हैं तभी आप सुदृढ़ हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित कर रहे हैं, आप अंदरूनी कुछ मान लीजिए विद्रोह हो रहा है उसको, उससे देश को सुरक्षित कर रहे हैं, तो आपको हमेशा कुछ इंस्पिरेशन चाहिए। वह इंस्पिरेशन वंदे मातरम देता है, क्योंकि हम जब भी लड़ते हैं, जब हमारा सैनिक लड़ता है या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज लड़ते हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा यही होता है कि हम अपने मदरलैंड की सुरक्षा कर रहे हैं, हम भारत माता की सुरक्षा कर रहे हैं। और देखिए जब वंदे मातरम पॉपुलर हुआ 1905-6 में, उसी समय में भारत माता की तस्वीर भी बनती, उसकी चार भुजाएं हैं, उसमें वस्त्र है, अन्न है, शिक्षा है, दीक्षा है, ये चार अंग हैं उसके। और जो वंदे मातरम का मंत्र है वह इस भारत माता की तस्वीर से जुड़ जाता है, जो मैप है उसको एक विजुअल शेप मिल जाता है, जिससे कि आप अटैच हो सके। एक सैक्रेडनेस है कि देश सैक्रेड है, दिस हैज टू बी प्रोटेक्टेड, द कंट्री हैज टू बी प्रोटेक्टेड। इसी इंस्पिरेशन से फौज लड़ती है, देश की सुरक्षा करती है, इसलिए यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि स्वदेशी आंदोलन के समय में था।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी हमारे सैनिक लड़ते हैं तो वो इसी भाव से लड़ते हैं सर, चाहे सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियाँ हों या फिर इंडियन ओशन का विशाल समंदर, तो दोनों ही जगह जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उनके अंदर यही भाव होते हैं वंदे मातरम के, और सर यही है जो उनके मोराल को अपलिफ्ट करता है। तो सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उन सैनिकों के लिए आपका क्या संदेश है?
0: उन सैनिकों के लिए यही संदेश है कि जितने तरह के लोग इस देश में सेवा कर रहे हैं वह सेवा सबसे बड़ी है। जो देश के चौहद्दी की सुरक्षा कर रहे हैं और अपने जान पर खेल करके सुरक्षा कर रहे हैं, उससे बड़ा पुण्य का कार्य हो नहीं सकता है, उससे बड़ा धर्म हो नहीं सकता है, उससे बड़ा समर्पण हो नहीं सकता, वह अतुलनीय है।
1: सर हमारे सैनिक जो अभी लड़ रहे हैं उसमें जैसे हमने देखा कि विमेन एम्पावरमेंट भी काफ़ी हो रहा है, चाहे महिलाएं हैं वो लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं, और जब हम वंदे मातरम के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ देखते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी। तो सर विमेन एम्पावरमेंट इन आर्म फोर्सेस, अगर हम इस लाइन का परिप्रेक्ष्य वंदे मातरम में खोजें तो वो कैसे आप देखते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों से हम इसको देख सकते हैं। और हमने पहले भी बोला कि हर युग की कुछ संस्कृति होती है, हर युग में कुछ जोर होता है
1: जी।
0: तो हमारे युग का 21वीं शताब्दी का जोर है कि नारी सशक्तिकरण हो, और यह आर्म्ड फोर्सेज में भी, CAPF में भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी, और आप देखेंगे कई तरह की नौकरियों में भी ये चीज़ दिख रहा है। और आप ग्रॉस इनरोलमेंट देखेंगे हायर एजुकेशन में तो महिलाएं बहुत अच्छी स्थिति में आ रही हैं। इस गीत में यदि हम देखेंगे तो शक्ति के रूप में दुर्गा को लिया गया है और उसके 10 आयुध की बात कही जा रही है। तो और उसके अलावा सिर्फ दुर्गा ही नहीं है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, जो तीन प्रोमिनेंट भगवानों की चर्चा हो रही है वो तीनों ही नारी हैं, तीनों ही महिलाएँ हैं। और यह तंत्र से आ रहा है, जो हमारे इतिहास में जो तंत्र का विकास हुआ वहाँ नारी को काफ़ी प्राथमिकता दी गई, वहाँ शक्ति का आह्वान हुआ, और यह कहा गया कि जितने भी भगवान हैं, जितने भी ईश्वर हैं, सबको शक्ति पर आधारित होना है, शक्ति अल्टीमेट है। दुर्गा का भी उसी प्रकरण में जिक्र आता है पुराणों में, और वंदे मातरम में बंकिम ने उनको काफ़ी प्राथमिकता दी, दुर्गा को, सरस्वती को, क्योंकि सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगा, विवेक भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है। तो सब चीज़ों को मिला करके एक सशक्तिकरण का भाव है। और आर्म्ड फोर्सेज में पिछले दिनों की अपेक्षा अब वर्तमान में महिलाओं को काफ़ी जगह पर प्राथमिकताएं मिल रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और लड़ाकू विमान का आपने जिक्र किया, एंड इट्स वेरी गुड टू नो कि इस तरह से आगे आ रहे हैं, इससे जो

0: महिलाएं पीछे रह रही हैं, जो लड़कियां पीछे हैं वो भी इंस्पायर होती हैं,
1: बिल्कुल,
0: उनको भी एक मिलता है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में
1: जी।
0: और मैं तो लगातार देख रहा था कि जो बॉक्सिंग में जो जिन लड़कियों ने मेडल्स जीता, गोल्ड मेडल्स जीता, अद्भुत कार्य किए। यदि भारत की इज्जत को सुरक्षित रखा वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो महिलाओं ने रखा।
1: तो कहीं ना कहीं त्वम ही दुर्गा दशप्रहर धाड़ी, ये वर्तमान परिपेक्ष में भी सर चरितार्थ हो रहा है।
0: एकदम चरितार्थ
1: जी। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जो हमारे एनडीए के कैडेट्स हैं, आर्मी के कैडेट्स हैं, जो यंग एकदम सोल्जर्स होते हैं, अगर उनको आप वंदे मातरम के ऊपर कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा सर?
0: एक तो उसको नियमित गाना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। जो देश सेवा है, जो जब आप देश के लिए लड़ते हैं, उससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। और इसी समर्पण भाव से लोग आर्म्ड फोर्स से ज्वाइन भी करते हैं और उसमें आगे भी बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन जॉब नहीं है, ये रूटीन जॉब से थोड़ा डिफरेंट है
1: जी,
0: थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप अपने जान माल की चिंता किए बगैर, अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर फ्रंट पे लड़ते हैं। और डिसिप्लिन, जो अनुशासन है आर्म फोर्सेज में, वह अनुशासन अन्यत्र मिलना मुश्किल है, क्योंकि वह अनुशासन अलग ढंग का है
1: जी।
0: और वो कमांड रिलेशनशिप अलग ढंग का होता है। बिना अनुशासन के आप देश की सुरक्षा कर भी नहीं सकते हैं। तो जिस अनुशासन से एनडीए के कैडेट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इतिहास को भी थोड़ा पढ़ें, वहाँ भी बलिदान हुए हैं, आप उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस देश को बनाने में, निर्मित करने में, आगे बढ़ाने में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा आर्म्ड फोर्सेज उसमें बहुत आगे है।
1: तो सर जब बात आती है देश के निर्माण की और देश की सुरक्षा की, तो सिर्फ जो सैनिक हैं उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है देश के निर्माण में अपना योगदान दे। तो वंदे मातरम को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता और हमारे जो दर्शक हैं उनको आपका क्या संदेश है वो भी हम सुनना चाहेंगे।
0: जो श्रोता यहाँ है, दर्शक है, उनको यह कहना जरूरी है कि जो राष्ट्रभक्ति है वह सेल्फलेसनेस से आती है। यदि हम अपने स्वार्थ को, छोटे स्वार्थ को आगे रखेंगे, फिर हम राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाते। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम अपनी चिंता करने लगते हैं, देश की चिंता नहीं करते हैं, समुदाय की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए हर नौजवान का, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आपका जीवन है सिर्फ आपके लिए नहीं है, उससे आपके समूह को कितना फ़ायदा हुआ, आपके समुदाय को कितना फ़ायदा हुआ, आपके क्षेत्र को कितना फ़ायदा हुआ, आपके परिवार को कितना फ़ायदा हुआ, आपके वृहत समूह को कितना फ़ायदा हुआ। यदि आप एक सेल्फलेसनेस के साथ काम करेंगे, स्वार्थहीनता के साथ काम करेंगे, तभी राष्ट्र धर्म की परिधि में आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से वंदे मातरम इंस्पायर कर रहा है, वह यही कह रहा है कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी मातृभूमि के लिए भी है, भारत माता के लिए भी है। इसीलिए उस भाव का यदि ध्यान में रखेंगे तो आप एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग उपयोगितावादी सिद्धांत में या व्यक्तिवादी सिद्धांत वाला देश नहीं है, यह समूह के, राष्ट्र के एक साथ आगे बढ़ने का सिद्धांत को लेकर के। और इसी संदर्भ में रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हरिवंश राय बच्चन ने 1948 में लेख लिखा राष्ट्रीय गीत पे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आपको सुनाना चाहूँगा उसके कुछ अंश। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, जो नगपति के उच्च शिखर से राजकुमारी के पदनख तक, गिरी गह्वर में, वन प्रांतर में, मरुस्थलों में, मैदानों में, खेतों में और खलिहानों में, गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में, बाहर घर में, स्वतंत्रता का महामंत्र बन कंठ कंठ से हुआ निनादित, कंठ कंठ से हुआ प्रतिध्वनित, जपकर जिसको आज़ादी के दीवानों ने कितने ही दी मिला जवानी, मिट्टी में काले पानी में, कितनों ने हथकड़ी बेड़ियों की झन झन झन पर जिसको गाया और सुनाया मन बहलाया, जबकि डाल वे दिए गए थे देश प्रेम का मूल्य चुकाने, कठिन कठोर घोर कारागारों में, कितने ही जिसको जिह्वा पर लाकर बिना हिचक के

0: हंसते हंसते झूल गए फांसी वाले तख्ते पर या खोल छातियां खड़े हुए गोली की बौछारों में।
1: बहुत सुंदर पंक्ति आपने कही, और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट जो कि वंदे मातरम पर आधारित था आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। और इसके साथ अपनी होस्ट रुचि को दीजिए अनुमति। नमस्ते, वंदे मातरम।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: இணைந்திருக்கிறோம் ஆகாசவாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் எஃப்எம் ரெயின்போ 102.6. நேரம் இரவு 11 மணி.
1: 14 அகஸ்ட் 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: இப்படித்தான் ஒரு நாள் காலையில எந்திரிச்சு போய் இந்த பக்கம் பார்த்தா
3: மேகம் பூவாய் தூவும்.
2: என்னடா இந்த பக்கம் ஒரே தூரலா இருக்குன்னு அந்த பக்கம் பார்த்தா
3: இதுவரை இல்லாத உணர்வு இது இதயத்தை.
2: இது இந்த பக்கமா போனா தூறுது, அந்த பக்கமா போனா துண்டாக்குதுன்னு பின்பக்கமா போனா
4: உங்க பொன்னான கைகள் புண்ணாகலாமா, உதவிக்கு வரலாமா, சம்மதம் வருமா?
2: என்ன எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ஒரே பாட்டா இருக்கு.
5: இசைமலைனா அப்படித்தான் இருக்கும்.
2: என்ன இசைமலையா?
6: ஆமா, நம்ம நெல்லை பண்பலைனாலே எப்பவும் இசைமலை தானே.
2: ஓஹோ, அப்போ எப்போதும் கேளுங்க.
5: இது 102.6.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव.
0: थैंक यू अमित. Benchmark domestic indices decline marginally. Sensex drops 71 points. Nifty settles at 24,366. India's wholesale inflation eases to 9.78% in July this year. And global crude oil prices rise.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 71 अंक का नुकसान. निफ्टी 24,366 के स्तर पर बंद. थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जुलाई के दौरान मामूली गिरावट से 9.78% दर्ज. और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त.

0: And as always, before we start the program, here is an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट से 71 अंक गिरकर 78,009 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 30 अंक के नुकसान से 24,366 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% और एनएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई. वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर कारोबार की शुरुआत दबाव से हुई और पहले सत्र में दोनों सूचकांक मंदी के दबाव में बने रहे. हालांकि बाद में गिरावट में थोड़ी कमी आई और कारोबार के अंत में सूचकांक गिरावट के साथ ही बंद हुए.
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower on the last trading day of the week. The Sensex dropped 71 points to close at 78,009. The Nifty dipped 30 points to settle at 24,366. The broader market also remained under pressure. The Nifty Mid-Cap 100 index declined 0.5%, while the Nifty Small-Cap 100 index slipped 0.7%. The markets opened on a weak note amid uncertain geopolitical conditions. Both benchmark indices remained under pressure during the first half of the session. However, in the latter half, the indices spared some of their intraday losses before closing in negative territory.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में गिरावट रही. गिरावट वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 1.7%, इंडिगो 1.4% और एनटीपीसी 1.2% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि भारतीय एयरटेल 2.5%, अडानी पोर्ट 1.8% और आईसीआईसीआई बैंक 0.6% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
0: In the sectoral indices on the BSE, 23 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, housing finance declined 1.4%, mid-small private banks quality tilt dropped 0.6%, and energy as well as oil and gas fell nearly 0.5%. In contrast, hospitals increased 1.5%, telecommunication gained 0.9%, and insurance added

0: 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,393 companies declined, shares of 1,896 companies advanced, while shares of 213 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली बढ़त से 95.43 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. विशाल, क्या नजर आता है बाजार में ट्रिगर क्यों नहीं आ पा रहा, या बाजार में कौन सा दबाव है जो बाजार को अभी भी तेजी बढ़ाने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है? बाजार दबाव में खुलते हैं, कुछ उसमें सुधार आता है, लेकिन अंत में दबाव ही हावी रह जाता है.
2: देखिए, आपने सही कहा, अगर आज के बाजार पर नजर डालें तो जो शुरुआत हुई वो बड़े दबाव में हुई, लेकिन दोपहर बाद वो जो दबाव जब अपनी पीक पर पहुंचा तो उसके बाद एक बार फिर से खरीद शुरू हुई शेयरों की और थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुई. इस तरह का पैटर्न केवल आज की बात नहीं है. मोटे तौर पर अगर निफ्टी को देखें तो लगभग पिछले 8 या 9 सेशन में ही पैटर्न रहा है. इस पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट लगभग 0.8 और 0.6 प्रतिशत के आसपास की गिरावट रही है. कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन एक एंथुजियाज्म की कमी है जिसे आप कहें मार्केट में, और वो कमी एंथुजियाज्म की कई फैक्टर्स के कारण है. कुछ फैक्टर्स इंट्रा मार्केट कहे जा सकते हैं, यानी कि जो एक एक करके जो नतीजे आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, यानी कि जिनको सेक्टोरल लीडर्स कहा जाता है, वो उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं. मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ खास तौर पर उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं जितने होने चाहिए थे. पहली बात तो ये. और दूसरा, बाजार हमेशा थोड़ा सा इंटरनेशनल फैक्टर्स की तरफ भी उसकी नजर जाती है. तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट की बात करें, यानी कि ईरान बनाम अमेरिका जो तनाव जारी है, उसमें उम्मीद जरूर जगी थी अब से 10-15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, कि इसका समाधान निकल रहा है, इसका समाधान हो जाएगा. लेकिन पिछले लगभग 8 से 10 दिन में उस तस्वीर में जो बदलाव हुआ है, उसका असर बाजारों पे ज्यादा देखने को मिल रहा है बनिस्बत जो जैसे हम तेल की कीमतों की बात करें, क्योंकि वो सेंटिमेंट नहीं उभर के सामने आ रहा है. यानी कि निवेशकों को ये लग रहा है कि शायद अभी इसमें समाधान थोड़ा और समय लगेगा, तो थोड़ा सा और कॉशियस रहने की जरूरत है. इसीलिए जो FIA की बिकवाली है वो भी जारी है. हालांकि आंकड़ा आज का देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग अगर मैं गलत नहीं तो शायद 500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जो बिकवाली FIIs ने की है. लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ी पिक्चर उभर के आती है उसमें फिर हम बाजार की तरफ देखते हैं कि आज घटा या बढ़ा
3: जी.
2: तो वो घटा ही है. अगर वो 0.8% भी घटा है तो वो घटा ही माना जाएगा, अगर वो 0.1% घटा है तो भी घटा ही माना जाएगा. लेकिन मेरा मानना है कि एक सस्टेन्ड एफर्ट मार्केट में जरूर है कि इसको, ये जो ट्रेंड है इसको किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए, काबू में रखा जाए. और एक कोई इंडिकेटर का इंतजार है, किसी एक इंडिकेटर का इंतजार है, और मुझे लगता है कि वो स्पर जो है बाजार में देखने को मिल सकता है आने वाले समय.
0: सो विशाल, यू आर सेइंग दैट टिल द टाइम द मार्केट सीज सम काइंड ऑफ अ स्पर, अ काइंड ऑफ ट्रिगर, basically what is going to happen is that the geopolitical conditions, the geopolitical scenario, the way it is what is going to weigh on the minds of investors till there is a clearer picture. And not just a clearer picture which stays clear for over a long period of time, over a sustained period of time, for markets to take their cues and, you know, get back.
2: It's like, you know, there's a trust factor as well when it comes to bigger international, push and pull or triggers as well. Now, in this scenario, the ongoing tensions in the Middle East, I think trust factor plays a very important role. Nothing seems to be, fixed and finalized, because for the past 2-3 months, what is happening is a decision is taken, then that decision is renegated upon from either side or from the both sides as well, or there is some other factor which comes into play. So it's going, it's sort of a pendulum effect. It's going to and fro, too much, happening. By the time the markets try to, recover from a particular event which has happened, something else comes across.
0: Yes.
2: So that is why we've seen this subdued sentiment in the markets over the past 5 to 7 sessions. And that is not only the factor, but yes, that is a major factor as well.
1: Vishal, agar sectoral indices ki baat karein, abhi bhi

0: कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि मेटल सेक्टर काफी बेहतर कर रहा था, अब वो भी दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन से दबाव हैं जो इस तरीके की चीजों को अभी रोक रहे हैं, या सिर्फ जो आपने शुरुआत में बात करी कि सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर हैं जो बाजार को दिशा देने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं?
1: देखिए, कई सेक्टोरल इंडाइसेस की जब हम बात करते हैं हमें, तो उसमें हमें ये भी देखना है कि उस सेक्टर पे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का है। आपने मेटल सेक्टर की बात की, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां किस तरह से चल रही हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जो बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका इस सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज़ में क्या बदलाव आया है, उसका असर, या फिर फ्यूचर में किस तरह की इंडिकेशन आ रही है, उसका असर सीधे पड़ता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि ये जैसे कहा जाए मुसीबत के समय के हीरो कहा जा सकता है। जैसे कि अगर आज ही का बाजार हम देख लें तो निफ्टी की तरफ देखें तो मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से बीएससी की तरफ देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं जो, या इंटरनल मूवमेंट्स हैं, उनका काफ़ी असर रहता है। उनका प्रदर्शन ठीक रहता है, उनकी उनके जो सेक्टोरल लीडर्स हैं, अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो अच्छे आ रहे हैं, और कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है जिसका नेगेटिव असर पड़े, तो वो धीरे से जो नुकसान बाजार में होता दिखाई हो रहा है उसे कवर अप भी कर लेते हैं। तो सेक्टोरल इंडाइसिस को समझना है तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या डोमेस्टिक हैं फैक्टर्स, या वो इंटरनेशनल ज़्यादा है, या वो दोनों का कोई एक मिक्स है। और अगर वो मिक्स है तो आपको वैसा ही मिश्रित रिएक्शन जो है उस सेक्टर की तरफ से भी देखने को।
0: क्या ये माना जाए कि निवेशक अभी उतने सतर्क हैं कि उनको लगता है कि अगर पिछले दिनों से और आज के दिनों में कहीं उस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको मुनाफे की गुंजाइश नजर आती है तो वो लंबे समय को छोड़ के अल्प अवधि में अपना कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत कर रहे हैं या उसको ठीक ठाक करने पे?
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जिन्हें कहा जाए कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के जो इन्वेस्टर हैं वो शायद इस वक्त बहुत तेज गति से अपने मैं कहूँगा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक एक एक एक लंबी दूरी का खिलाड़ी होता है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कहीं अपने अपना धन निवेश किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। हालांकि मैं ज़रूर कहूँगा कि बीच बीच में उसको उस इन्वेस्टर को उस सेक्टर की पॉलिसीज, उस सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है उसकी परफॉर्मेंस, उस सब पे नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन ये जो समय होता है जब उठा पटक चल रही है बाजार में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदा भी है और कहीं कहीं नुकसान भी है।
0: बहुत संक्षेप में एक चीज ये जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत की जो घरेलू परिस्थितियां हैं और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो एमएसएमई को सपोर्ट देने से इनिशिएटिव ईसीजी लिए थोड़े दिन पहले ही सरकार ने दिया है, और इंफ्रा पे भारी मात्रा में निवेश है जो बरकरार है, ये सारी स्थितियां हमारे बाजार को कितना स्थायित्व देने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाती हैं?
1: इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो आज ही की बाजार की परफॉर्मेंस है। मैंने कहा कि निफ्टी की अगर अपने तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर था उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, उसने थोड़ा सा शॉक को एब्जॉर्ब किया। और देखिए, जहां तक पॉलिसीज की बात है उनमें कंसिस्टेंसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल पॉलिसीज बाजार की दिशा तय नहीं करती हैं, बहुत सारी और भी सेंटिमेंट्स हैं जिनसे बाजार की दशा और दिशा तय होती है, जिनमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से वो मोमेंटम बन रहा है बाजार
0: जी,
1: में।
0: चलिए खबरों के कुछ और अच्छी खबरों पर नजर डालते हैं। जुलाई के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के दौरान वार्षिक महंगाई दर के मुख्य कारक खनिज तेल, खाद्य पदार्थ, धातुएं, गैर खाद्य उत्पाद और रासायनिक उत्पाद रहे। मासिक आधार पर मुद्रास्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा की महंगाई दरों में कमी आना है। थोक महंगाई दरों में मामूली कमी के बावजूद लगातार तीसरे माह महंगाई दर 9% से ऊपर बनी हुई है। उत्पादक मूल्य सूचकांक में वार्षिक आधार पर 9.57% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मासिक आधार पर यह लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। थोक मूल्य पर आधारित खाद्य सूचकांक जून के 6.14% से बढ़कर जुलाई में 6.65% हो गया। थोक मूल्य सूचकांक में शामिल प्रमुख घटकों में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 7% से बढ़कर 8.5% रही, निर्मित वस्तुओं की महंगाई दर 7.5% से बढ़कर 8.3% रही। हालांकि ईंधन और ऊर्जा समूह की महंगाई दर जून के 27.4% से घटकर 20% रह गई।
2: विशाल, इफ यू लुक एट द फिगर्स, WI figures, नो डाउट द ओवरऑल फिगर्स, इफ यू लुक एट इट, हैव

0: the recent move by the government and the RBI for you know, the FCNA, yeah, the OCIs and, you know, POIs, wherein they can invest, you know, their money in a particular scheme. Now that has contributed a lot, and I can see, you know, although those figures are not here, but I can see, I'm pretty sure that would be a significant part of the contribution. But yes, of course, again, what is saved on one end, if you don't spend it there, then of course it can be considered as a saving, and that is why, you know, the exchange reserves, foreign exchange reserves, are a good indicator of how exactly are we how wisely are we spending our money, and what is the international scenario. So as of now, it looks to be in our favor, to be very honest.
1: बहुत संक्षेप में एक लाइन में, अगर साप्ताहिक आधार पर सरकार की जेब में विदेशी मुद्रा बचती है, इसके संकेत कितने अच्छे नजर आते हैं?
0: देखिए, मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था अमित जी के, अगर
1: जेब में पैसे आ रहे हैं,
0: आधार पर जेब में पैसे बच रहे हैं, तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले ही सप्ताह उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरता है, तो अब देखना पड़ेगा कि सरकार इन पैसों का इस्तेमाल, या ये जो धन संचय हुआ है, ये किस स्कीम पे होता है, किस सेक्टर पे होता है, किस तरह सरकार उसको खर्च करती है।
1: मोटे तौर पर राहत की बात तो है।
0: मैं बिल्कुल
1: जी। चलिए नजर डालते हैं एशियाई बाजार पर। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.4% और जापान के निक्के में लगभग 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। विशाल, अगर इसके साथ एशिया के प्रमुख बाजारों के भी हम चर्चा करें, वहां पर ठीक है, नुकसान तो नहीं है, और जैसा कि पहले कहा जाता था, अब पूरा विश्व एक वैश्विक बाजार बन चुका है, क्या ये माना जाए? क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे जो संकेत हैं वो उतने उत्साहजनक नहीं है, जिस जो बाजार में टिगर की आप बात कर रहे थे वो भारतीय बाजारों में आ पा रहे, क्या यही एक कारण है, या सभी बाजार निवेशक अभी देखो और सतर्क रहो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस तरह से आपने भी बताया, सब उसी के प्रति चिंतित हैं, या इसके अलावा और भी कोई कारक है?
0: देखिए, केवल मिडिल ईस्ट की बात नहीं है, अगर हम दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो यूरोपीय देशों की बात करें, उनके बाजारों की बात करें, तो उनपे रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर पड़ता है।
1: एक खबर इसमें बीच में यह भी आई थी, क्योंकि यूक्रेन से, चूंकि वो बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक था, वहां उसके दामों में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, कमी भी आई है।
0: जी बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस अर्थव्यवस्था के आसपास का इलाका जो है, वहां अगर किसी तरह का जियोपॉलिटिकल तनाव है, तो उसका सीधा असर वहां भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनकी ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है, उसकी भी ग्लोबल इम्प्लीकेशन थी, क्योंकि उसको उसके चलते रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ते हैं, और अगर इन दोनों के बीच तनाव बढ़ते हैं, तो उसका असर बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस पे, और उसका सीधा असर एनर्जी सेक्टर पे पड़ता है, जिसका असर इन टर्न पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर पड़ा, और हमने देखा भी कितना किस तरह से पड़ा। फिर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, कुछ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो, और उसका असर भी देखने को मिलता है। और फिर कुछ इंटरनल पॉलिसीज जो हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में, लगभग 2 से 3 साल में, हम सब लोगों ने देखा है कि कई सारी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको और इंटरनली बाउंड कर दिया है, तो उसका कितना असर बाहर पड़ेगा, किस तरह से वो प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स मिला के एक एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, जिसमें मार्केट ढूंढती है कि कोई स्पर तो मिले, कोई एक स्पार्क तो मिले। अब वो उसी का इंतजार शायद हो रहा है।
2: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रेटन्ड एन इनडेफिनिट नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान। ब्रेंट crude was trading 0.1% up at $87.11 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.3% up at $81.50 per barrel when reports last came in.
1: घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य आधा प्रतिशत के नुकसान से 152,363 रुपए प्रति 10 ग्राम पे रहा, जबकि चांदी 0.2% की कमजोरी से 233,842 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। विशाल, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कच्चे तेल में एक खबर आती है, थोड़ी सी उसकी कीमतें वापस से दबाव में आती, बढ़त के तौर पर करती हैं, लेकिन पिछले अगर एक सप्ताह की बात मैं सिर्फ सोने चांदी के ऊपर केंद्रित करूं, सोना वहां से काफी लंबा सफर तय कर चुका है। जहां पहले लग रहा था कि नहीं सोने में अभी और गिरावट रखती, वहां से सोना वापस से रिबाउंड हुआ। अब ऐसी स्थिति में ये तेजी का क्या कारक है, और कच्चे तेल की कीमतों में वो किस करवट लेती हुई नजर आएगी फिलहाल की परिस्थितियों में?
0: मैं संक्षेप में कहूंगा, कच्चे तेल की कीमतों में तो आपको उतार चढ़ाव

0: देखने को मिलेगा।
1: जी
0: लेकिन सोने में आपने सही कहा, ये अनुमान मेरा भी है कि अब जो गति सोने ने, धीमी गति जो सोने ने पकड़ी है, मुझे लगता है वो धीमी गति से बढ़ोतरी जारी रहेगी। उस गति, वो गति बहुत तेज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बढ़ोतरी जो है, ये धीरे धीरे धीरे धीरे जरूर जारी रहेगी।
1: विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब
0: थैंक यू,
1: चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: थैंक यू अमित। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन मार्जिनली, सेंसेक्स ड्रॉप्स 71 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,366। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 9.78% इन जुलाई दिस ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र फॉर नाउ, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: சில நொடிகளில் ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் செய்திகள் டெல்லியில் இருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए लाइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर कल हस्ताक्षर किए। ये समझौते कल नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हुए। यह प्रणाली आर्टिलरी रेजिमेंट की क्षमता बढ़ाएगी और सेना की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत करेगी। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी नेताओं ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। सिएटल में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फेडरल रिजर्व बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। समारोह में अमेरिकी नेताओं के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आश्रम स्कूल के हॉस्टल में सांप के काटने से 3 आदिवासी छात्राओं की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः

0: संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्टल में खाट की व्यवस्था नहीं होने के कारण छह छात्राएं फर्श पर सो रही थीं, तभी उन्हें सांप ने काट लिया। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the Prime President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में केवल प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं बाकी हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल और बिजली की सुविधा बढ़ेगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकटतम समन्वय पर भी विचार हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग

0: अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुँच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पी नारायण के खिलाफ अमरावती विकास योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित आपराधिक मामलों को रद्द करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कहने पर शुरू की गई थी और कोई भी किसान शिकायत लेकर आगे नहीं आया। पीठ ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
0: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
0: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism.

0: முதல் முதல் பயம் வரும், வர வர சுகம் வரும். ஆயினும் என்னம்மா தேன்மொழி சொல்லம்மா, பாரதி கண்ணம்மா நீ சின்னம்மா.
1: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த இந்த நிகழ்ச்சி 100.1 FM கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும், அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
3: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
2: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
3: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान करने का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम को अपार जन समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सरकार ने टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। मंत्रालय के अनुसार टीवी प्रसारण में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि के नियमों की समीक्षा की गई है। वर्ष 2006 में जब यह सीमा लागू की गई थी तब देश में 62 टीवी चैनल थे, अब इनकी संख्या 900 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में डिजिटल बदलाव के बाद दर्शकों के पास अब चैनलों के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the president highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics and many artists showcased their talent in Bastar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The president said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through our joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these

0: இனிய ராகம் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும், அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விகாஸ் மெஹ்ரோத்ரா. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है. राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की. राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है. ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है.
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी. आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है.
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है.
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है. आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं. इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है.
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है. राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे. दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है. आज सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू हो गई है. यात्री लाल किला पहुंचने के लिए मेट्रो

0: सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम को अपार जन समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग को कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the president highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday, the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm today.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics and many artists showcased their talent in Bastar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The president said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
1: Speaking about the country's young population, the president said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the president has given a powerful and inspiring

0: இன்னும் சில நொடிகளை தொடர்ந்து ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, माय भारत के उत्कृष्ट स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी और पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। उन्होंने तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के संबोधन को प्रेरणादायक और प्रभावशाली बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता